0: आसपास गोली चलाना बंद कर और सीधा गोली तन खोपड़ी में इसकी।
1: इस परी
2: सामिर हाथा वहा कंगो फिल्म दिए अति तेज चही कीने भी
3: मैं तो हम तंकोला वहा गया अन्न बेनु सारा या की का वगत कोला हेदो कोलन कम
2: एहेंता हाद रंगले
3: आ मैं ती सारा हरन गे ना एच
2: हादी आए मियो मैं तो मी की क्या महर में गे एनिवर्सरी विष्णु आ नहीं वने सामिर हांदान नितुनी सा बस सामिरा मिरुवती सामिरु के रट्टिसि के दरिफुलु के कैविनी पार्टी ए आहार में के एनिवर्सरी पार्टी ए नूने
3: आहार नतिकं इंगे एको मुकु सहर मियो दहम सारे हदिया देहिवि आहार में के कैविनी कुरि दुस हांदाम स्वी मा बोडा
2: लोबिंगे मरन रीति मिया गोटी सामिरु के चॉइस सामिरु के टेस्ट हम अवर सली
3: ती शक्के वे सक्कम नूने मगे आंखें उन्ना बदल दी मैं इंगे न मगे चॉइस की हार रंगलों का
2: आस्तु ऐसे मैं अंगोटी वारर रीति वारा वारर रीति अली नोंद सामेरु
3: रीति वारर रीति एका मुको सारा वारर इच्छा
2: दिन ये वो कॉफी ये साथ टेचे बैठ उन्दा
3: हाँ सारा या की कोई जिया कॉमेडी चॉइस ओके
2: मैं दादा रोमांटिक वेग मुले दो है केदो

0: अध्ययन की नवेफती हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वे
0: अनेक काठेस तो क्या रे भी मता मन्ना हाँ द देरा वेफाये
1: आहार ने गवार गया कुछ जे आहार ने माला में कुरने
0: हास नो एब स्पेल द टी प्रोग्राम अडुए ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंगा लो हो दंगे ना
1: स्पेल द टी ये
0: Mikaal kankan dimaavi ma kanta kure vidana goittan e programu nge gane.
1: Spill the tea. Hame gani divehi raadze gaadu.
2: Aditta dua hoge haveiro hatra gadi fanaraga.
3: Repeat. Buddha dua hoge haveiro hatra gadi fanaraga.
2: Adi budaaspati dua hoge haveiro fahed zahaido.
0: Engha sataristeka saalis 9 kilohertz medium wave. अदे अड्डिया 9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमे कने दिवही राज्य गडो इंतजार को लवा
4: स्पिल द टी
5: कोम्मे उमुरका
6: कोम्मे फंतियाका
5: कोम्मे गिंतियाका दिवही राज्य गे अडो एंहा 7440 9 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव
6: अड्डिहनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
7: गडी मेंदुर एकजे थेबे फ्रंगाडो समति गेंदवणी दे राज्य गाडो
8: कुरी पोशी

0: மேயஸ்திரின்.
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दरगुमेंटी हां जे गाडू को प्रोग्राम ताडो समगे दुआ में हम तेरना और हे के वरंग उफा वेर वक्त को के दे दुई कौम इखलास तेरे कमा की रंग रंग को खिदमत करो बे में हम तेरना हित के हे दुआ ते रद्द करेंगे तो दुई कौम अगुर खिदमत करो वा फ में हा बेफुल अलगन मेंगे मिलो वा कौम बिना करो पे नुहानो लोबिंग बरो फुल देवे मियन तो अलगन में बेफुल में बला करना ने नुहानो शुक्र वेर कमा की वर लोबिंग है तो वरंग हे हित को इफ द को में बेफुल के वसल को मेंगे हित को वानी wara fundo ebbe algun menge mi dibe kaum bina koddema iye ge hidmet tering mi etu gesra ben koddebi tenveri ikhlas ter brama sekket ta katta ka huri habe funas wara pota shukriya ange ta ad mes ter mi sulsna ko me program me besal mi hasa kroni ko me ves isra vesaka no ta isra ben ge tering tafat mes ter ka mi etu program ka mes hafta ga mes ter ave gotun tve fun ge shur ta algun me himna ala tve fun aswal kurum fursat onnan algun menge mi etu ge mes ter ke swara khas be flinga ta dibe kaum wara agore khidmat ke kore be befle mat be from swal korbam gulbam gendo tine tine hatare sumen hai

0: मिनी बंदूक के खास प्रोग्राम तो के तेरे
1: दिव्य राज्य के मिनिमम कम की तारीख
2: इंग्रेसिंग ऐतिहासिक हिमायत व राज्य मिनिमम कंधी बुनो में तारीखी एग्रीमेंट का सही करें बुनी नवार से ते का फर्स्ट रस फर्स्ट पर नाहरोगे जुलाई माह के सब बीस पर
0: दिव्य हिंग मिनिमम कंग मान करा गए

0: के आसपास गोली चलाना बंद कर और सीधा गोली तन खोपड़ी में इसकी।
1: इस परी
2: सामिरो हाथा वहां का मुफी होती है अति देर चही कीने भी
3: मैं तो हम तंकोला वहां गया अन्न बेनु सारा आया की का वगुत कोला हेतु कोलन कम
2: एहिं ता हाथ रंगले
3: मैं ती सारा आहार गेना है चे
2: हाथी आए मियो मैं तो मैं की क्या माहर में गे एनुवासरी विष्णु आर नहीं वने सामेरो हांदा नितुनी है सा बस सामेरा मेरे वो ती सामेरो के रट्टिसे के दरिफुलो के कैविनी पार्टी है आहार में गे एनुवासरी पार्टी है नूने
3: आहार नतिकांगे एक वो कुछ आहार में तो हम सारे हाथी आए दे ही भी आहार में गे कैविनी कुरी दोस हांदा हम स्वी माँ बोटा
2: लो बिंगे मरन रीत में अंगोटी सामेरो के चॉइस सामरु के टेस्ट हम हमारा सड़ी
3: ती शक्क वैसे कमें नोले नो मगे आंखें उन न बदल दी मावस इंगे न मगे चॉइस की हार अंगलों का
2: आस्तु वैसे मैं अंगोटी वारर रीती वारर वारर रीती अरे नों द सामरु
3: रीती वारर रीती एक हम को सारा वारर रीचा
2: दिन ये वो कॉफी ये सादे टेस्ट बैठूं ता
3: हाँ सारा या की कोई जिया कॉमेडी शो के
2: मेरा दादा रोमांटिक वेकिंग उल्लेख हुए क्या दो

0: हंगार
1: मी दिव्ही राज्य के अड़ू के उफे तुम्हें
2: अंगादी उंगनादी मुनिफोई फिलवा दिनुमगा
3: थेदु वेरी कमायको
2: एकु वेरी कमायको
3: एरोवेस मिहारोवेस रायतुन्नायको रायतुन्ना एम्मे गातुगा दिवेहराज्य के अडु
2: एंहा सतरस्ते कसालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
1: राज्य के कोमे हिसाबे गहुरी के बस एबस आगे देखो मकानुला पीएसएम के चैनल तक फोन उंगाडू हाला बलालुम फसे हगोते
4: पीएसएम एआर
5: दिवे राज्य के आडा दीनु के आडू आदि दिवे एफएम बस आडू हाल वेने
1: टीवीएम यस टीवी आदि पीएसएम न्यूज़स बलालुम
4: पीएसएम एआर
5: आईओएस आदि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करवेने
1: पीएसएम एआर
5: आप हाँ फोन डाउनलोड करो पा।
1: मैंने वंदुओं के खास प्रोग्राम तो के तेरे।
6: गाड़ी में हम रह रहे थे जाने। ये तो केवल खास तो है। नहीं ना उन्हें ना हर एक इंतजार का। मैं बेहे वार या बदस्तान ना कर देने। हर में फुरता बदल वे एक कैम दोस
7: राफील
6: नहीं रा
8: नो
1: तकदीर इंगे नम मिने वंदु होगे मेंदुर एक कड़ी सो मिनट का एंगा 17.40 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 8.5 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमें कनी दिवे ही राज्य के आटों

0: मुन्ना कोबा की ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में के दक काफुं अता
2: मुन्ना थी है बरको वेंडा हिं कमेन ने अफन तिकन कोलन
1: तिको दुं हाउ दाई रंगल ले तिहें मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना सकां कां को देन्ना हेदी मुन्ना वरहा उपावे

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम हो रहा फाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ दे अंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: खुद दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐह मी है के दतोरो अमावे उफावेरी वे दाने

0: Munifuhi Filovadi, Malumatke Hazana Musalikode, Emme Tubar Kurve Bavaria.
1: Dihira Jege Adu.
0: Inghas Hatharstek Sals Noe Kilohertz Medium Wave, Adiha Noe Megahertz FM Band.
2: Mije huniya kan taka den ahikan metanu emme inche biskuri ek jassa dewek mi varunu kuriya mi pickup biskuri ek nu jhen
3: excuse tankole takka fananta
2: datta ma bes mewal nawa tankole nu dibigenne
3: aharenge ge dorumati ge tini tiyapura tankole kuriya vyas fahate vyas jassa dim ahana ge wadeweni
2: ehanta sorry
3: darfla sama Tita ini dengan coach itu kiewe ni, berunggu ya mai we adu fakgandu, lahikir nung kiewaka.
4: Mama, wakih macam ni res kiewe ta, jehi keng huri keng lawa jaha show kule adu nung eh ngadern ni we, ati ege mati be hada adu fakganda hati bolu karis saiba.
3: Deng ki kurani derfla, eh le kudamiha, iru kule nuan ninda wa famin ku meli siharaya. Adi ni uru ni en helam waira. Namada ves ara
5: hama heme mahoda gaim kurma komme mihe kuves emihe ke farti zimma ada kurba
6: rasul bekaluna nabi bekalung siratake irshada nasihat ke dammare
7: ए दम्मरु के अलिंग हो दे तजुरबाए के हयात के रास्ता फस्सिया गेंगुस्ते ने आरु काटिए
8: ए आरु काटी गे ही मादम या कोशार कुरात के चकी हेयो हलाल तके चंगा दम
7: दीनु के अड़ूंगे नस्ते नी
9: रसूलुन्ना नबीयु
10: हो मधु के में दुरुंग अम्ब्रा देख चहायरो रिपीट अंगार दो के हेंदुनो अकड़ तेरे हूँ आधे पुत्र तो करे तिहा कर तेरे हूँ
7: हमें कनी नौ दिया में घर्स दीनु गया डू
6: इस्लामी तारख के तेरे कुरेवे दातुर
7: मुकद्दस तंतना इस्लामी ताऊसे बिना कुरुंगा मुहिम दौरे मदा कुफावा समांवी तंतनु के वाहकता
11: कमुंग बल्किस के अस्तु रसकंग उती कोंग सरहद क्या तो देने करनं आर्कियोलॉजिस्टुं वारबुड़ समाकम
6: रत्ता बिना कुरिगोता इल्मंग हिबर्दी पिंताऊ का इल्मंग हित फ्रादी गई
7: कुरी पोशी
12: कोमेहों मधुहे के हिंदुनो आगड़ी तेरी हूँ
7: रिपीट अंगार दोगे विंदुरु एके चहर आदि बुद्ध दोगेरे आगड़ तेरी हूँ एंगा सतर्स्ते के साल इस न्यू किलोहर्ट्स मीडियम बेव आदि अट्ठानवे मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
12: इंतजार कर दूँगा
13: मैं आर गाड़ी फातिह हाथरे जय मैं दिव्य राज्य गया डू